फिर के अगे रखिए जित दिसे दरबार, मोहो के बोलन बोलिए जित संतरे प्यार प्यार, अमृत वेला सचना वर्यही विचार, करमी आवे कपड़ा नरी मुख द्वार, नानक एवे जानिए सब पी सचार,

सुनिए दुख पाप का नाश, अमन ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पुछताए, कागर कलम न लिखनहार, मन ने कब करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जोड़ने मन कोए, मन सुर हो वे मन बुद, मन सग पवन की सुद, मन मोचो तला नकाए, मन जाम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन मगर टाक न पाए, मन पथ से पगट जाए, मन मगन चले पंथ, मन धर्म से तीसर बंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन पावे मुख द्वार, मन परवर सदार, मन तारे तारे गिरसिख, मन नानक पवे ना पिक, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रदान, पंचे पावे तरगे मान, पंचे सोहे तार जान, पंचा का गिर हेक ध्यान, जे को कह कर विचार, खते के कर्ण नहीं समार, दाल धर्म दे आका पूत, संतोख तप्र की अजन सूत, जे को बुझे हवे सचियार, तवले ऊपर किता पार, दरती होर परे होर, तिस्ते पार, तले कवन जोर, जिय जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कलाम, एहो लेका लिख जाने कोए, लेका लिखिया केता होए, केता तानस आले रूप, केती दा जाने कौन कूत, केता पसाओ एको कवाओ, ठिस्टे होए लक डिरियाओ, कुद दित कवन गहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुर पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंक जाप असंक पाओ, असंक पूजा असंक तपताओ, असंक ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंक जोग मन रहे अतास, असंक भगत गुण ज्ञान विचार, असंक सती असंक तातार, असंक सूरमो पाकसार, असंक मुन वलय तार, कुडित कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जोटित पावे साए पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंक मूर्ख अंध गोर, असंक चोर राम खोर, असंक अमर खर चाहे चोर, असंक गल वटिया कमाहे, असंक पापी पाप कर चाहे, असंक खड़िया खड़े फराहे, असंक मलेच मल पक खाए, असंक निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुर पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंक नाव असंक थाव, गम गम असंक लोआ, असंक कहे सिर पार होए, आखरी नाम आखरी सलाह, आखरी ज्ञान गीत गुण गाहा, आखरी लिखन बोलन पाण, आखर से संजोग वखाण, जिन हे लिखे ठिस सिर नाए, जिव फरमाए तिव ते पाहे, चेता कीता तेता ना, विन्ना वेना ही कोताओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुर पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, परिया है तो फिर तांदे पानी दोते उठ सके, मूतक लीती कपड़ होए देसा बूना लाई आ ओ तोए, परिया मात पापा के संग हो तो पेना वे के रंग, पुनी पापी आकन जना है, कर कर करना लिख ले चाहो, आपे बीजा पे ही खाहो, नानक हुक्मी आवो चाहो, तीर्थ ताप

अंतर गत तीरथ मलना सब गुण तेरे में ना ही कोय विनगुण कीते भोग न होए स्वास्थ आत्मबाणी ब्रह्मा हो सत सुहान सदा मन चाहो कवन सो वे लाभकत कवन कवन तित कवन वार कवन सृति माहो कवन जिर हो आकार वे न पय पंडती जे हो वे ले पुराण वक्त न पय कदिया जिल कन ले करान तित वाना जोगी जाने रित माहो न कोई चाकर था सिर्टि को साजे आपे जाने सोए किव का राक किव सलाहे क्योवा ने किव जाना नानक आकर्ण सब को आके एक दू एक स्याना वड़ा साये वड़ी नाये किता जाक होवे नानक जे को आपो जाने आगे का न सोहे पातला पतालक अगास अगास ओड़क ओड़क बद्ध के वेद कहन कवात सहस ठेरन खिन किते पा आसू लिकताट लेका होए था लिखिए लेके होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सलाही सलाहे इति सुर न पाया नदिया आते वा पवह समुंद न जानिया है समुंद सल सुतान गेर सती मलदान कीर्ति तू न होवनी जेठ समनोर विसर है अंतन सिफ्ति केन न अंत अंतन करने तेन न अंत अंतन वेकर्ण सुन न अंत अंतन जापे क्या मन मंत अंतन जापे कीता अकार अंतन जापे पारवार अंत करण के

पूजा एक ओंकार सात कुर प्रसाद। ऐहो मन गिरही कि ऐहो मन उदासी, कि ऐहो मन आवरण सदा अविनाशी। ऐहो मन गिरही के ऐहो मन उदासी, कि ऐहो मन आवरण सदा अविनाशी। कि ऐहो मन चंचल, कि ऐहो मन बैरागी, ऐसा मन को ममता कित हो लागी। पंडित इस मन का करो विचार, आवर की बोता पर है उतर है उठा, अवह पार रहो। माया ममता करते लाई, एहो हुक्म कर श्रेष्ठ उपाय। गुर प्रसादी बूच हो पाई, सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तेहा गुण की फंड उतारे, आन दिन एको नाम बखाने। साधु गुर की एहो ओहो दिखाया ले, सात गुर आगे शीश ढड़ाए। सदा लाग अलाग रहे निर्वाण, सो पंडित डर गए परवान। सपना माहे को एक बखाने, जा एको वेखे ता एको जाने। जाको बक्से मेले सोई, एते ओते सदा सुख होए। कहत नानक कवन बिद करे किया कोई, सोई मुक्त जाखो कृपा होए। आन दिन हर गुण गावे सोए, शास्त्र भेद की फिर कूक ना होए। आन दिन हर गुण गावे सोए, शास्त्र भेद की फिर कुक ना होए। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।